तो सुखितो हो तो परमेन्द्र महाराजा स परम राजनी सिद्धि किचं सिद्धि कमं सिद्धि लाभो चयो निचं परमेन्द्र महाराज वरता परम राजनिया सह भव